चरण चलो मार्ग को बंद मिटे बाप जपी हर बिंद कार हर कर्म श्रवण हर कथा हरदर गया नानक उजल मथा बडभागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार सेतन वंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने तुत की ओ सोजी जाने नाम संग जिसका मन मान्या नानक दिन निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै सार संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्योहार जन रहत आनंदन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ में सोई निर्बान एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी घटी है जाम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे ना लाग है दुख जिसको हर पाप मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं डोलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डरे जैसा सात ऐसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत सब बूझिया जब देखो ताप साब किश मूल नानक सो सुखम सोई असूल नै किश जन्म नै किश मरे अपन जलत आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सकल में आप अनिकुतरा चथाप उथाप अपनासी ना ही किछ खंड धारण धार हो ब्रह्मांड अलख पे पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सो पावंत सकल संसार उदर तिन मंत प्रभ के सेवक सकल उदारन प्रभ के सेवक दुख विसारन आपे मेले कृपाल गुर का शब्द जप है निहाल उनकी सेवा सोई लाग जिसनों कृपा करे बड़ भाग नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान जो किश करे सो प्रभ का रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभा हो वैसो होए करण हार पछाण सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा साथ ऐसा दृष्टाना जिस ते उपजे ते समाहे समाये सुख ओए सुख निदान उनहु मन आए आप सुख आप दीनो मान नानक प्रभ जन एको जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाके सिमरन उदरिये नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गानन हार गोपाल सर्व जिया पे प्रतपाल सकल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप बनासी प्रभ आपे आप अपन किया कछु न होए जेसो प्राणी लोचै कोए तिस बिन नाही तेरे कछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह प्रभ की जोत सगल घट सोह है।

जिस गुरु प्रसाद टूटा हो रोग नानक सोजन सदा रोग जो मंदिर को थमै थमन त्यों गुर का शब्द मने असमन जो पाखाण नाव चढ़तर प्राणी गुर चरण नगद निस्तर जो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन हो विगास जो महाध्यान में मार्ग पावे त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संदन की बादशो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिल लाई है प्रभु लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्रभु देव नहार अवर त्याग तुत से तार जो कछ करे सोई सुख मान भूला काहे कर भूला

ता जब मान लिहो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल, लाद खेप संत संचाल, अवर त्याग घिया जंजाल। धन धन कह सब कोय, मुखुजल हर दर गै सोए, वा पार बिरला वा पार, नानक ताके सतबलिहार। चरण साध के धोए धोए पी अरप, साधु को अपना जियो, साधिक धूर करो स्नान, साधु पर जाइए कुर्बान, साध सेवा वड भागी पाइए, सार संघर कीर्तन गाइया, अनेक विघ्न ते साधु राखे, हर गुण गाय, अमृत रस चाखे, उठ गही संत है दरियाया, सर्व सुख नानक तेह पाया। मृतक को जीवालन हार, भूखे को देवता आधार, सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे। साबक जिसका हो करना जोग, तिस बिन दूसर हुआ ना होग, जाप जान सदा सदा दिन रानी, साब त्योच निर्मले करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया, जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जने आवे हर प्रभ जीत, भगत भगत सुनी है तिहु लोए, जाके हृदय को होए। साच करनी सचता की रहत, साच हृदय सात मुख कहत, साची दृष्ट साचा कार, सच वर्ता साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। श्लोक रूप ना रेख ना रंग के क्षेत्र गुण ते प्राप भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस हो वै सुपर सान अष्टपति। अविनाशी ब्राह्मण में राख, मानुख की तू प्रीत त्याग, तिस्ते पर नाही किछ कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सोजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निदान दयाल बगसंद। सा तेरे की चरनी पाओ, नानक मन हो नराओ, मन सा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाना होरन, द्रुप मंगल सद जाका, सर्व थोक सुनिए कर ताका, राज में राज जोग में जोगी, ताप में तपिसर ग्रस्त में भोगी, त्याय त्याय भगत सुख पाया।

रहे पूरन सब ठाए, नाना बिदकर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाए, साब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवै नानक हर नाओ, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगला आकार, नाम के धारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सोजन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जागी बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी, सत कर्म जागी रचना सत मूल, सत सत उत्पात, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बजाय तिस सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जाकर दे प्रवेश, सत नित बुझे जे कोय, नाम जपत तागीगत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गात, जिसकी श्रेष्ठ सो करने हार, अवरना बुझ करत विचार, करते कि मित न जाना किया, नानक जो तिस भाव सो वरतिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बुझा तिस आया स्वाद, प्रब के रंग राजन रहे, गुर के भजन पदार्थ लहे, ओ दाते दुख अटनहार, जाके संग तरे संसार, जन का सेवक सो वड भागी, जन के संग एक लिबलागी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे, श्लोक आदि सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच अष्टपदी, चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत ध्यानहार, आप सत सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभगता, सुरत सत सत च सुनता, बुजनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत रूप हृदय जन मान्या, करन कराम दर मूल पछान्या, जागर दे विश्वास प्रभ आया, तत ज्ञान दिस मन प्रगटाया, पैते निरप होए पसाना, जिस देव जत समाए समाना, बस्त माहिले बस्त गड़ाई, ताक भिन्न ना कहना जाए, बुझा बुझनहार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक का मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाना संग, प्रभ का सेवक नाम का रंग, सेवक को प्रभ पालन हारा, सेवक की राख्या निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ धार, नानक सो सेवक सास सास मार, अपने जन का पर्दा ढक, अपने सेवक की सर पर राख, अपने दास को देव डाई, अपने सेवकों नाम जपाई, अपने सेवक की आपत राख है, ताकि गत मित कोई न लाख है, प्राप के सेवकों को कौन आप पहुंचे, प्राप के सेवक उचते उच्चे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, निक्की कीरी में कल राख है, भस्म करे लश्कर कोट लख है, जिसका सास न काट दे आप, ताको राख देकर हाथ, मानस यतन करत भोपांत, तिसके गर्त बिरथ जात, मारन राख वरना कोय, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभा लख बिडाणी, बारंग बार बार प्रभ जपिय, पिय अमृत हो मन तंत्र पिय, नाम रतंजन गुरुमुख पाया, तिसके अवर नाही दृष्टाया, नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रस जो जन त्रिपताने, मन तन नाम है नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन का सदकाम, बोलो जस जह बाजन रात, प्रभ अपने जन कीनी दात, करे भगत आत्म क्या चाहे, प्रभ अपने से रहे समाये, जो हुआ होवत सो जान, प्रभ अपने का हुक्म बचान, तिसकी महिमा कौन बखानो, जिसका गुण कहे एक ना जानो, आठ पैर प्रभ से हजूरे, कहो नानक थे जन पूरे, मन मेरे तिन की ओट लेहे, मन तन अपना तिन जन दे, जन जन अपना प्रभु पुछाता, सो जन सर्व थोका दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पाव है, तिसका दर्स पाप मिटाव है, और सियानम सगली शाड, तिस जन की तू सेवा लाग,
ਆਵਨ ਜਾਨ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਤ ਪੈਰਾ। ਸਲੋਕ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਸਿ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਦਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਰੈ, ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਬੰਧਨ ਕਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤਿਹਾਟੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗੈ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਸੇਵਾ ਕਰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ, ਜਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ। ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਉ, ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ, ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਅੜ ਪਹਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਇੱਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ, ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਭੇਟ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹ ਗਵੇ, ਸੁਨਕਰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ, ਮਨ ਸੰਤੋਖਾ ਤੰਪਤੀਆਨੇ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਪੇਖਿਆ ਹੋਏ ਸੰਤ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਲਏ।

अंधकार दीपक पर गासे नानक परम मोह दुख तैते नासे तप तमाय ठा डबर त्याई अनंत भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मटे अंधे से साधु के पूर्ण उपदेसे भाव चुका निर्भोय बसे सकल ब्याध मन देखे नसे जिसका साधन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चुके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस रवन निर्गुण या सरगुन पियो ही।

सब ते ऊचता की शोभा बनी नानक हे गुण नाम सुखमनी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सिद्धि मन मजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दो ता गाव हरी केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तुसदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सवारना सब ना गल्ला समराज स्वामी सो क्यों मनो वसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरा घरता तेरा सब कुछ है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहेब क्या नहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आय वसया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु वटो जिस दी एह वडियाईया कह नानक सुनो संत हो शब्द रोपे आरो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तत घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया दुद जन को से नाम हर कै लागे कह नानक त्यास होवा तित कर अनहद वाजे अनसनो वड भागियो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सकल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

महिमा साधु संघ की, साध संगत की बहुत वड्डी महिमा है। भाई गुरदास साहब जी कहिंदे जिवें तनक ही जामन कै दुग्ध दद होत, जैसे संगत विच बैठे हो गज के आखो सतनाम श्री, बोलो गज के सतनाम श्री। दही लाउण वास्ते दुध दा बेशक बर्तन भरिया होवे, पर उन्हूं दही जमाउण वास्ते थोड़ी जी लस्सी की लोड़ है, कोई बहुती की लोड़ नहीं होंदी। दुध दे मुताबक थोड़ी जी जाग दे नाल, थोड़ी जी लस्सी दे नाल बनिया होया दुध जिहड़ा दही बन जांदा है। अगर उसे विच कांजी पै जावे ते दुध फट जांदा है, बेकार हो जांदा है। संगत विच बैठिया थोड़ी जी कागरता बन गई तां गुरु की कृपा वरत गई, महिमा साधु संग दी है। तनक ही जामन कै दुग्ध दद, जामन जसी दुग्ध दद होत जैसे तनक ही कांजी पर दूध फट जाता है। अगर मनमुखा का संग होंदा है कांजी पै जावे तो दुध फट जाता है। तनक ही बीज बोए बिरखा बिसथार होए, बोड़ दा बीज बड़ा छोटा है पर दरख्त बहुत वड्डा हुंदा है। तनक ही चिनग पर थोड़ी अग पै जावे तो खाक हो जाता है। तनक ही खाए विख होत है विनाश काल, थोड़ा जहा यार मौत दे घाट उतार देवेगा। तनक ही अमृत कै अमर हवे गात है, संगत विच है अमृत बाणी अमृत नाम, जिन्हों कहिंदे अमृत नाम निधान है मिल पीवो भाई। जिन्हों साहब जी कहिंदे अमृत बाणी हर हर तेरी संगत विच है, सत संगत कैसी जानी है, जथा एको नाम वखाणी है, एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता मैल खोई कोट अग हरे। वाहिगुरु वाहिगुरु, अंदर दी मैल लह जाती है, करोड़ा ही पाप जेड़े हरे खत्म हो जाते ने कादे नाल, गुरु की संगत विच। संगत विच नाम है कोट अग हरे, निर्मल भय चीता सिंह बिलाई होए गयो, तरण मेर दखीता। जेड़े हंकारी पुरश होंदा ना जदो संगत विच आ जाते ने वह निम्रता विच आ जाते ने, जेड़े उच्चे चढ़े होंदे ने हंकार विच वह निम्रता विच, जेड़े करीब होंदे ने गुरु उन्होंने उपरले मरतबे बख्श दे दिंदा है। महिमा साधु संग की, सिंह बिलाई होए गायो तरण मेर दखीता, शरम करते दम आड़ को ते घणी तनीता, कवन बड़ाई कह सकाओ बेअंत गुनीता, कर कृपा मुहे नाम देहो नानक दार सरीता। गरीब निवाज दातार जियो, तुहाडे दर ते आए आ, कृपा करो नाम दी दात बख्शो, कवन गौण प्राण पात मिलो मेरी माई।

जेको गुरमुख होए इह बाणी मां पुरख के निज घर वास होए। गुरबाणी इस जग में चानण करम वसै मन आए, सत संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं मैराई। धन मेरे गरीब निवास जी, कृपा कर दे सत संगत अते बाणी तो बिना सिख नू होर कोई टेक नहीं है। गुरु दी ओट है, गुरु दी टेक है। सतगुरु धन गुरु नानक दे महाराज जी कृपा कर रहे ने, कल सांझ कर रहे सी, आओ अमृत बचना नाल सांझ करिए।

जल ते बुद्ध बुदा उपजे बिनसै नीत जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत जग रचना सब चलना है ना जी जग दी रचना झूठ है जग रचना सब झूठ है

मैं तरना नहीं जानता, संसार समुंदर है, मैं तरना नहीं जानता, कोई बेड़ी भी नहीं है। ते गरीब निवाज तुलहा, तुलहा हुंदा जिवें लकड़ां कट्ठियां कर लिया, पराली कट्ठी कर ली, एक बहुत वड्डा सारा लकड़ां दा कट्ठ जिहा कर ला, डुबदियां नहीं, कट्ठियां करके कहिंदा जी इहदे नाल पार हो जावांगा। मेरे कोल बेड़ी भी नहीं है, मैनू तरना भी नहीं आउंदा, मेरे कोल तुलहा नहीं भी है, हम बूढ़स असीं डुबदे जा रहे हां, जिवें प्रतक समुंदर विच कोई डुबदा है। गरीब निवाज तार ले हे तारण राया, हे गरीब निवाज मैनू संसार समुंदर तो तार दिओ।

गुरु प्यारी साध संगत, आओ सारे कलगी धर पातशाह दे चरणा विच अपने बिरतियां टका लईए, सतगुर दे दर्शन करिए। गुरु की संगत विच आप रब वर्गियां संगतां गुरु दरबार विच जुड़ बैठे हो, बहुत खुशी हुंदी है जदों आप वर्गियां संगतां रब नाल जुड़ के कीर्तन सरवण करदे हो, गुरु नाल जुड़ के बैठदे हो। दास नूं कल गुरमुख सज्जना ने हुक्म कीता कि तीन वीकां तुहाडियां बीत गईयां है ते कलगीधर पातशाह दा प्रसंग नहीं सुनाया। आयो तुसी दरबार पौंटा साहब कलगीधर पातशाह दे दरबार विचों, पर मैं बेनती करां, यह है तो मेरी वड्डी भोली है, गलती है, गुनाह है, पर संगत बख्शन योग है ते आप ही असीस बख्श के सतगुरु दे चरणा च अरदास करके सेवा करवा लैनी। आओ सारे सतगुरु कलगीधर पातशाह दे उचारण कीते हुए वचन सरवण करिए, नाले गायन करिए, ते नाले दो चार मिनट का मैं तुहानू कलगीधर पातशाह का एक बचन भी सांझा करांगा जिहड़ा गुरु दरबार विचों सतगुरु दे दर तों लोकी झोलियां भर के जांदे हन, भंडारे भर के जांदे हन। सो आओ सारे करो कृपा।

गुरु प्यारी साध संगत, कलगीधर पातशाह वर्गा गरीब नवाज कोई दुनिया च ना होया, ना हो सकता, ना होना। मेर करो तरंग ते मोजा है गरीब नवाज, ना दूसर तो सो भूल शिमो हमरी प्रभ आपन पूलन हार, कहूं कहूं मोसो। सेव करी तुमरी तिनकी सब ही ग्रह देखियत दर्ब परोसो, या काल में सब काल कृपान कह भारी पुजान कह भारी परोसो। दास पौंटा साहब कलगीधर पातशाह दे महान पवित्र स्थान तो आप जी की चरण तोड़ लैन वास्ते आए। दास नूं पौंटा साहब रहिंदिआं तकरीबन 51 साल 52 साल हो गए सतगुरु की बख्शिश का सदका, ते कलगीधर पातशाह लगातार उत्थे 4.5 साल रहे। इतिहास आप सारे जानते हो, सुनते हो, पढ़ते हो। राजा मेदनी प्रकाश ने बेनती की, सतगुरु ने मंजूरी दिती, पौंटा साहब सतगुरु ने चरण पाए। 8 महीने सतगुरु नाहन शहर विच रहे, उत्थे भी स्थान बड़ा सुंदर है। ते फिर सारे रियासत का भ्रमण किया, जमुना नदी के किनारे राजा मेदनी प्रकाश के नाल ते नीले घोड़े ते सवार मेरे कलगीधर पातशाह जदों पौंटा साहब की धरती ते जमुना के किनारे आए, ते घोड़े का भी इशारा सुन के पैर उत्थे टिक गया। कवि संतोख सिंह जी सुंदर बचन लिखते हैं, पाम टिकायो सतगुरु को श्री आनंदपुर ते आए, तां ते पामटा नाम भयो सब देसन प्रगटाए। थोड़े दिनों विच सतगुरु के हुक्म अनुसार किला बन गया। सतगुर 4.5 साल लगातार रहे। राजा फतेह शाह ते राजा मेदनी प्रकाश की सुलह कराई, जमीन जायदाद वापस मिल गई मेदनी प्रकाश नूं। फिर राजा फतेह शाह ते भीम चंद दुश्मन बन गए, ते भंगाणी का युद्ध होया, बहुत पहला 22 धार दे राजियां नाल। युद्ध विच सतगुरां ने जदों जित हासिल कीती, ते सतगुरां ने इहो नहीं आखिया कि साडी ताकत नाल साडी हिम्मत नाल युद्ध जितया ना। जदों युद्ध जित के वापस आए ते बचन उचारण कीता, भई जीत मेरी कृपा काल केरी, रनंग जीत आए जयंग गीत गाए, कि हे अकाल पुरख दी कृपा दा सदका ए बख्शिश होई। पता लगा बड़े साहबजादा दा जन्म होया पौंटा साहब दे दरबार विच, ते सतगुरां ने उहदा नाम बाबा अजीत सिंह रखिया, जिहड़ा किसी कोलों जित्या नहीं जा सकता। प्यारी सात संगत, पीर बुद्धू शाह सढौरे वाले ने 700 मरीद 4 पुत्र भतीजे जंग विच शहीद करवाए, ते जदों आके सतगुरां दा शुकराना करन वास्ते नमस्कार कीती, ते सतगुरां ने तकिया पीर बुद्धू शाह वल। सतगुरु उस वेले केसां विच कंघा वाह रहे सन, दस्तार स्थान दे बैठ के, वह कंपलैक्स के अंदर है अस्थान, दस्तार स्थान, सोहनिया दस्तारा सजाते सन। आप सतगुरु उत्थे बैठ के तैयार होंदे सन, दस्तार सजाया करते सन, कंघा केस करिया करते सन। ते पीर बुद्धू शाह सढौरे वाले ने नमस्कार की, तो सतगुरु कह लगे, आओ पीर जी, बड़ी थोड़ी वड्डी कुरबानी है, मंगो की मंगते हो, किवें आए हो? तो पीर जी ने पता की मंगया, सचे पातशाह मैं तो एक तरला बेनती जोदड़ी करन आया कि जेड़ी सेवा तुसी लई है, केड़ी सेवा? 700 मरीद 4 पुत्र भतीजे शहीद करवाते, ते आख्या महाराज जेड़ी तुसी सेवा लई है वह प्रवान कर लेना, गज के आखो श्री वाह। सतगुर कहन लगे, गुरु नानक दा घर है, मंगो जो तुहानू चाहिदा देंगे। 3 वारी वचन किया, तो कहन लगा, महाराज वर एक जो केस तुसी वाह रहे हो, केसा समेत कंघा मेरी झोली विच पा दिओ। इहदा अंतरी भाव है कि गुरसिखी मंगी पीर बुद्धू शाह ने। सतगुरां ने अपनी अद्धी दस्तार पाड़ के छोटी श्री साहब ते केसा समेत कंघा पीर बुद्धू शाह की झोली विच पाया। पूर्णमासी नूं कवि दरबार सजाया करते सन, हर भाषा का, हर जात का, हर मजहब का कवि हाजरी भरदा सी। अज पूर्णमाशी का दिन सी, एक गरीबड़ा जिहा सिख 52 कवि उत्थे तैयार किए। 52 कवियों चो उस कवि का 14वें नंबर ते नाम आउंदा है इतिहास विच।
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹੰਸ ਰਾਮ। ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜੁੱਤੀ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੈਲਾ ਪਰਨਾ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਜੀ ਅੱਜ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜੇਗਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਸਜੇਗਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਨ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਨਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹੰਸ ਰਾਮ, ਲੋਕੀ ਹੰਸੂ ਹੰਸੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਗਰੀਬ ਅਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੋ ਉਸ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ।

नानक मार जवाले सोए ऐसा बुझ परम ना भूलो कोए पैरो महला तीजा मैं कामण मेरा कंत करतार जेहा कराए तेहा करी सीगार जां तद पावे तां करे भोग तन मन साचे साहेब जोग रहाओ उस तन निंदा करे क्या कोई जाय आपे वरताए को सोई गुर प्रसादे प्रेम कसाई मिलो गे दयाल पंच शब्द बजाई पंत नान करे क्या कोए जिसनो आप मिला बै सोए पैरों महला तीजा सो मन जे मन के दुविधा मार ब्रह्म विचारे इस मन को कोई खोज पाई मन खोजत नाम नौ निध पाई राहो मूल मोह कर करते जगत पाया ममता लाए परम बुलाया इस मन ते सा पिंड पराणा मन के विचार कंबोज समाणा कर्म होवे गुरु कृपा करे इस मन जागे इस मन की दुविधा मराए मन का स्वभाव सदा बैरागे समय वसया तेते अनुरागे कहत नानक जय जाना पयो आद पुरख निरंजन देओ प्यारो महला तीजा राम नाम जगत ने तारा पवजर पार उतारण हारा गुरु प्रसादी हर

आपे दाद करे दातार, देवन हारे को जयकार, नदर करे सतगुरु में लाए, नानक हृदय ना वसाए, पैरो महला तीजा, नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जना प्राप्त होए, हर जो अपनी कृपा करे,

प्राप्त होए। हर का भाणा मन से जन परवान, गुर के शब्द नाम निशान। सो सेवै जो कल रह आचार, नानक गुरमुख नाम प्यार। भैरो महला तीजा,

0: तन मन खोज कर मैं पाया, गुरमुख राम नाम चित लाया। ज्ञान अंजन सतगुर तय होए, राम नाम रब रया तै लोए। कलयुग में हर जियो एक होर रुत न काई, नानक गुरमुख हृदय राम नाम लेहो जमाई।
1: ओंकार सतगुर प्रसाद, मन दुबदा मन मुख रोग व्यापे, तृष्णा जले अधकाई, मर मर जमे ठोर न पावे, बिरता जन्म गवाई, मेरे प्रीतम कर कृपा दिहो बजाई, हामे रोग जग दबाया, बिन शब्द रोग न जाई राव, सिमरत शास्त्र पढ़े मन केते, बिन शब्द सुरत न पाई, त्रै गुण सबे रोग आपे, ममता सुरत गवाई,

गए गवाण तू आपे करदास तरण जन नानक मेल तेरा दास दसायण भैरों महला चौथा बोल हर नाम सबल सागरी गुरु देश सब दुख बरहरी मेरे मन हर भज नाम नर हरी कर कृपा मिलो गुरबुरा सत्संगत संग सिद्ध बोतरी जग जीवन त्याए मन हर सिवरी कोट कटंतर तेरे पापररी संत संग संत संग संगत साध मुखभरी स्नान कियो अड़सरी हम मुर्ख कुहर कृपा करी जन नानक तारियो तारण हरी भैरों महला चौथा सौकिंद करनी सारज माली हिरदे फेर चले तुद नाली हर हर नाम जपवन वाली कर कृपा मिलो सत्संगत तूड़ गई माया जल जाली राव गुरमुख सेवा काल जिन काली तिस कणिये शब्द सची डंगसाली हर कम गोचर गौर कम दाली विच काया नगर लदा हर बाली हम बारक हर पिता प्रण बाली जन नानक तारो नदन हाली भैरों महला चौथा सावगण तेरे तू सब न माहे तो इते बाहर कोई नाहे हर सो दाता मेरे मन जाब हाँ तुत सलाही तू मेरा हर प्रभाव राव जय जय देखा तै हर प्रभ सोई सब तेरे वास दूजा अवर न कोई जिसका तुमार हर राज्ञा वाए तिसके नेड़े कोई न जावे तू जल तल मैयल सब ते भरमोर जन नानक हर जप हाजरा हजूर

जल फेरा हो जाग जब तब संयम तड़ तीर नहीं पाया मिठा आप पैशन आई गुरमुख नानक जगत राया भैरों महला मजा बनवे वेख्यो त्रिमणे वेख्यो ग्रह वेख्यो उत साए धन तार जन तारे वेख्यो वरत नेम ते साए संत संग में क्यों बनवाए ओ व्याल सर में पूरन रस मंगल गुण गाय रहो जोग बेगा सन्यासी में क्यों जत जंगम का बनाए तापत विसर मुनि में बेक्यो नट नाटक निरताए चौ में बेक्यो कट में बेक्यो दस हट्टी सिमरताए

बुन बुन आपा पहरा वो जय नहीं आप तहां होय बगावो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया चार चले हम कछु न लिया। देख लाख निकले निरखले मेरा आप खोज खोज में मिले कबीरा। निर्दया दिन कोई न दे लाख जतन करे उचित न त्रे रहो। जो निर्दन सरदन के जाए आगे बैठा पीठ फेराए। जो सरदन निर्गे निर्दन के जाए दिया आग लिया बुलाए। निर्धन सरदन दोनों पाई।

भाई देहि को सिमरे देव सो देहि बजर की सेवा पजो गोविंद फूल मर जाओ मानस जन्म का यही राव राव जब लग जरा रोग ने आया जब लग काल कर से नहीं काया जब लग बिकल भई नहीं वाणी पजल रे मन सार गवाणी अपना पजस पजस का भाई आवे अतना पज हा जाए जो कुछ करे सोई अवसार फिर पता न पावे पार सो से वो जो लाया सेव तिन्हे भाई निरंजन देवा गुर मिलता के खुले कपाट वो न आए जो निवार ए तेरा अवसर है तेरी वार कट भीतर तू देख विचार कहत कबीर जीत के हार बहु वेद कह पुकार पुकार शिव के बुरे बसे बुद्ध सा तह तुम मिल के करो विचार ए त्योद के सोजी परे कौन कर्म मेरा कर कर मर निज पाद पर लागो ध्यान राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान राहो मूल द्वारे वंद्या बंद रव रहा रव पर गह रहा चाख्या चांद पश्चिम द्वारे सूज तब मेर डांड सिर पर वस है पश्चिम द्वारे की सिलो तिल ऊपर खिड़की और खिड़की ऊपर दसवा द्वार कह कबीर ता का अंत न बा सो मोहला जो मनसूल रे गुरु प्रदेश काल सूझ रहे

के अघन ब्रह्म वेच परचारिण सुपने बिन दे चरण तिथ गाय का जी को जरा नवरना सुसरतान जो सोए तरता ले बार जाता पीतर आने गगल मंडल में लश्कर करे सो सुल्तान शतर सिर तरे जोगी।

जब लग सिंह रहे बन माए तब लग बन भूल ही मुनाए जब इश्यार सिंह को काय भूल रही सगले बन राय ये तो बूढ़ो हारो तेरे गुर प्रसादित पार उतरे दास कबीर कहे समझाए केवल राम रहो लिबलाए सतर से सलाह रह जाके सवाल ला पैकाम भरता गे शेख जो कहे कोट उठा दे छपन कोट जाके खेल गासी मो गरीब के को गुजरावे मसल दूर महल को पावे रहो तेती करोड़ी है खेल खाना चौरासी लख फिरे दिवन बाबा आदम को कुछ दर्द काई उन वे भेद कन्हेरे पाए दिल खलान जाके जर्द हुवानी छोड़ के करे सैतानी दुनिया दोस रोस है लोई अपना किया पावे सोई तुम दाते हम सदा बेकारे देव जवाब होए बजगारे दास कबीर पदरी पने समाना पेतन जी करा कमहरा माना सब को ये चल कहते हम ना जानो वैकुंठ वैकुंठ है कहाँ रहो आप का मर न जाना बात नहीं वैकुंठ बेखाना जब लग मन वैकुंठ किया तब लग नहीं नहीं चरण निवाग काये कोट न पर बगारा ना जानो वैकुंठ द्वारा कह कबीर अब कहिए काहे सास संकट वैकुंठ आए क्यों ले जे गर्भंका पाए दोवर कोट तेवर काई रहा पांच बसेद मोहे मत मरसन लाली पर मल माया जन गरीब को जोर न पहुंचे कहाँ करो रखवाया काम के बारे दुख सुख दरबानी पापुन दरवाजा करोड़ प्रधान महाभरतुंदर तय मानवा वासी राजा स्वाद सुना टोप ममता को कबोध चुमक मान चढ़ाई कितना तेर रहे कट पितर यूं गार लियो न जाए प्रेम प्रीता सुरत वाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म गण सहजे पर जली एक चोट से जाया सस तो ले लड़ने लगा तोरे तो दरवाजा सास संग अर गुर की कृपा ते पकड़ियो गढ़ को राजा भगवते सकल सिमरन की कटे काल से दास कबीर चढ़ियो गढ़ पर राज लियो अवनासी गांगुसैन गैर कबीर जी जीर बांध कर करे कबीर माना डिगे तन काहे को डराए चरण कमल जित रह समाये रहो गंगा के लहर में टूटे जंगीर मृगशाला पर बैठे कबीर कह कबीर को संग न साथ जाल तल रख नहर रघुनाथ पैरो कबीर जुवट परी कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम तड़ो है रास अगम तड़ो कर चुबा तामे जोत करे प्रकाश बिले चमके हुए आनंद जय पौड़े प्रभाल गोविंद ए जो राम नाम लिव लागे जरा

शंकर जय पौड़े प्रभु श्री गोपाल खंड मंडल मंडल मंडा त्रियस्थान त्रिया तीन त्रिया खंड अगम गोचर है अभ्यंत पार नावे कोतर नेतर मान कदले पोहत तूप पर गास राज पंकज में लियो निवास द्वार दाले अरंतर मंत जय पौड़े शिव कमला कांत आर दौर मुख लागो कास सुन मंडल में कर प्रकाश हुआ सूरज नाही चंद आय निरंजन करे आनंद सो ब्रह्मांड पिंड सो जान मान सरोव कर सुना सोहे सो जा को है जाप जा को लिप्त न हो पुण्य अर पाप वर्ण वर्ण काम निछाप अवर न पाइये गुर की थाम करे न डरे न आवे न जाए सुन सहद में रहो समय मन मंदे जाने जय कोई जो बोले सो आपे हो जोत मंत्र मन अस्त्र करे हा कह कबीर सो प्राणी तरे कोट सूर जाके है प्रकाश मेरे को मह कोट महादेव कबला दुर्गा कोट जाके मर्दन करे ब्रह्मा कोट वेद उचरे जो जा चौथो केवल नाम देव सो नाही काम रहो कोट चंद्र करे चराग सूरज के तेज वह वाक नवग्रह कोट ठांडे दरबार कार धर्म कोट जाके प्रतिहार पवन कोट चौबारे बरे वासन कोट से बेतरे समुद कोट जाके पानी हार रमावल कोट अठारा भार कोट कमेर परे पंडार कोट लक्ष्मी करे सिंगार कोट को पाप पुन दोहरे कोट इंद्र जाके सेवा करे छपन कोट जाके प्रतिहार नगरी नगरी खेते अबार लड़ छोटे वरते बकरार कोट कला खेले गवार कोट जाग जाके दरबार गंधर्व कोट करे जय घर विद्या कोट सवे गुण कहे तो पार ब्रह्म कांत नहे वावन कोट जाके रोमावली रावण सेना जय ते श्री सहज कोट व कर्त मुरांतर जोधन का मत्या हमान गंधर्व कोट जाके लवे ना तरे आंतर अंतर मन सारे कह कबीर सुन सार्ग बन दे अपे पद मांगो दान पैरो पानी नाम दो जी की कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

हरे हरे सब का पाप कमल मल अम्यो दृष्टि शुभ करे हरे सब पाप कमल संग काम क्रोध अर लोभ मोह बस करे सब बल सदा सुख मन बसे दुख संसार खोवे गुर नौ निद जरियाओ जन्म हम काल खतोवे सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह देशाओ जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो दर्शन प्यासी दिन से रात चितवो अंदिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत

सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाहे दर्शन परसिए गुरु ते गुरु के जन्म मरण दुख जाहे वाहे गुरु साहिब जियो राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद दिन ते पहर पहर ते करियां

एक अनेक अग्नि बुझे कोट भाव दरगे निसजे शूरस नाही उपयाल मोह व्यापे माया जाल अवर करतूत सगली जमडाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साथ जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मटावे हर हर नाम हृदय सतगावे जे को अपनी शोभा लोरे साथ संगे ओमे शोरे जे को जन मरण ते डरे साजना की सरनी परे जिस जन को प्रदर्श प्यासा नानक ताके बल बल जैसा सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान आप उसको जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा जाका मनोए सगल किरीना हर नाम दिन कर कर चीना माने अपने ते बुरा मटाना पेखे सगल शिष्ट साजना सुख दुख जन संदिष्टे ता नानक पाप पुण्य लेपा निर्धन को तन तेरो नाउन थावे को नाउ तेरा थाउ निमाने को प्रव तेरो महान सगल कटा को देवो दान कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गतमित जन हो आपे आपन संग आप प्रव राते तुमरे उस्त तुम ते होए नानक अवन जान सकोए सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में उत्तम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन

प्रतीत आपी खोवे मोर उसका विश्वास न होवे जिसकी भक्त जागे राखे प्रभ की आज्ञा माने माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सरबर होवत जान नेत बिरकी छाया सिउ रंग लावे ओ बिनसे ओ मन पछतावे जो

मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने। मिथ्यास्त परधर्म को हिरे मिथ्या नेत्र पेख बरतरिया रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चन पर विकार को धावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे।

सुचार मृता नाम बिना तन अंध मुख आवता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन मृता बिहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन मृथे सब काम ज्यों कृपन के नरार्थ दाम।

नानक जस कह जय प्रसाद सुने करन नाद जय प्रसाद वेखे विस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुन सहज जय बसना जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुन सहज समावे ऐसा प्रभु त्याग और कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस पाको मूल मनो मिसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ताको जाप जय प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू दास्यो राच जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सो नाओ आप गाव आए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मधु तुम होए सर्वन धान प्रभु तेरी मैं आया पो कछु न किनु लया

जाप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी नाथ मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर में आ ब्रह्म ज्ञानी तेक्ष बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि मंत बरसी।

दारे पुरिया सब भवन नाव के सांग सरवणम कर कृपा जिस अपने नाम लाए नान चौथे परम पद में सो जन गद पाए रूप सत जा का सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सजा की बाणी सत पुरख समा इस माणी सात कर्म जाके रचना सात मूल सात सात उत्पाद सात करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रका सुखदाय विश्वास सत नान गुरते पाए सत वचन साधु उपदेश सत्य जन जाके हृदय प्रवेश सात निर्दे जे को नाम जब ताकि गत हो आप सत किया सब साते आपे जाने अपनी मेहत गाते इसके शिष्य करने हार अब न बूझ करते विचार करते कीमत न जाने किया नान जो तुझ भावे सो वर्तिया विस्मन विस्म विस्मार जिन बुझा तया स्वाद प्रभ के रंग राजन रहे गुरु के वचन पदार्थ लहे ओए दाते तू कट नार जाके संग तेरे संसार जन का सेव सोवट भागी जन के संग एक लव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आदि सच जुगाद सच है पै सच नानक होसी पै सच अस्पदी चारण सात सत प्रसन्न हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत वेखण हार नाम सत सत ध्यावण हार आप सत सत सवधारी आपे गुणे आपे गुणकारी शाब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जल सुनता पूजन हार को सत सब होए नानन सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया कर्ण करावण तिन मूल पछानिया जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन बढ़ाया पैते निर्भो होए बसाना जिसते उपजा तिस माए समाना बस्त माए ले बस्त कटाई ता को पिन न कहना जाए बुझे बुझणार विवेक नारायण मिले नानके ठाकर का सेवक आज्ञाकारी ठाकर का सेवक सा पुजारी ठाकर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकर के सेवक की निर्मल रीत ठाकर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रपालना हरा सेवक की राखे नंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धारे नानक सो सेवक सा सा समारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पद राखे दागी अदमित को लागे प्रभु के सेवक को ना पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैत प्रडायम निकी की री में कल रखे पद्म लश्कर को लखे इसका शासन काटते आप ताको रख देख रात मान जतन करत बात इसके करते बिरथे जात मारे न रखे अवन को हे सब जिया का रखा सोए काए सोच करे रे प्राणी जब नान प्रवल बडानी बार बार बार प्रव जपी है पी अमृत मंथन त्रभी है नाम जिन गुरु मुख पाया दिशक जम ना दिष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुकार नाम कसंग नाम रस जन तृपताने मंत्र नामे नाम समाने उठत बैठ सोभत नाम कहो नान जन के सतकाम बोलो जस सेवा दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात करे भक्त आत्म के चाहे प्रभ अपने सो रह है समय जो आओ सो जाने प्रभ अपने का हुक्म शाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभ से जूरे कौ नान से जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मंतने अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु पिछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख भावे तिसके दर सब भाव मिटावे अवर सियान सगली छाट तिस जन की तू सेवा ला गया उन जान न होवी तेरा नान तिस जन के पूजो सद बैरा श्लोक सत पुरख जिन जाने सतगुर तिसका नाम तिसके संग से उतरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुरु सिक्की करे प्रतिपाल सेवको गुरु सदा दयाल सिक्की गुरु दुरमत मल हे गुरु बचनी हर नाम उचरे सतगुरु सिक्के बंधन काटे गुरु का सिख बिगार ते हटे सतगुरु सिक्को नाम धन दे गुरु का सिख बटभागी हे सतगुरु सिक्का हलत पल सुवारे नानक सतगुरु सिक्को जी नाल सुमारे गुरु के ग्रह सेवक जो रहे गुरु की आज्ञा मन में सहे
ਆਪ ਸਗੋ ਕਰ ਕਸ਼ਨਾ ਜਨਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰੇ ਸਧਿਆਵੇ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਤੋ ਇਨੇ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਸਾਫ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ ਬੀਸ ਵਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੇ ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਨਾਉ ਅਨਕਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ ਸਰਵਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਅੜ ਬੈਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਾਨ ਜਨਮੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਏਕੈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਜ ਭਰਮ ਸਹਿ ਸਿਆਣ ਬਲਿਆ ਨ ਜਾਈਏ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ ਸਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖ ਬਨੀਤ ਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਗਾਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਪੇੜ ਸੰਗਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੇ ਸੁਨ ਕਰ ਵਚਨ ਕਰਨ ਗਾਨੇ ਮਨ ਸੰਤੋ ਗਾਦਮ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਖਿਓ ਜਾਗਾ ਮੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੇਖਿਓ ਸੰਤ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪਾਵੇ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਜੇ ਬਾਏਕ ਉਸਤ ਅਨੇਕ ਸਤਿਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗਮ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਵਾਨੀ ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ਧਾਗੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰੇ ਚੰਨ ਕਮਣ ਹਿਰਦੇ ਸਿਮਰੇ ਸਤਿ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ

हर का नाम ले सचिव दे सेवको दे मोह माया कह संग न ले मन में राखे हर हर एक अंधकार दीप प्रगासे नान परम मोह दुख दैते नासे तप्त माए ठाण बरताए अंध पिया दुख नाठे पाए जन मन के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पहुंचुका निर्भो बसे।

हर कुन टुटतावे सोतन हर सेवा ते पावे जिसो को निबाचे मी सो सुख साधु संग परीत जैसो बाको करे भली करनी सासो बाबज हर की सनी अन को भावी रोग न जाए रोग मिटे हर औख दलाए सर निधान में हर नाम निधान जप नानक दरगे प्रवान मन पर बोधो हर के नाए दिस्ताव तावे ठाए तां को बिघन लागे कोए जाके हृदय से हर सोए कलता दी ठंडा नाओ सिमर सिमर सदास कुबाओ पोविन से पूर्ण होए आस भक्त भाए आत्म प्रकाश कर जाए बसेव नासी को नानक काटी जम फासी तत् विचार कहे जन साचा जन मरे सो काचो काचा आवा गमन मिटे प्रव से आप त्याग शरण गुरुदेवे और रतन जन्म का हो उदार हर सिम प्राण उदार अंक भाव न छुट नारे सिमर शास्त्र वेद विचारे हर के भगत गुरु मन लाए मन भज नानक बल पाए संग न चाल तेरे तना तू क्या लुटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटंबर बनता इनते कहो तुम कम सुनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकारा सस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ मसारी जिंदी है तुझ बुझे नाम गाना नाम सा नानक मस्ताना गुर की मातू ले याने भगत बिना वो डूबे सहने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत जन को मन राखो मन माए जन्म जन्म के किल बिख जाए आप जबो अवरा नाम जपाओ सुनत कैत रहत गत पाओ सार पूज हर सद हर को नाओ सह सवाय नान गुन गाओ गुन गाव तेरी उतर समैल बिन जायो में बिग पहल होए चंद विशेष गुनाड़ सास ग्रासा नाम समार चाड़ ज्ञान सगली मना सार संग पावे सतना यार पूंजी संच करो व्यवहार इया सुख दर गय जयकार सर्व निरंतर एको दे कौ नान जाके मस्तक लेख एको जब एको सला एक सिमर एको मन आए एक के गुणगाओ अनंत मंथन जाप एक पवंत एको एक कर पूर्ण पूरे प्रभ्या बनक विस्तार एक ते पह एक रात प्रास्त गए मंथन अंतर एक प्रराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक संत शरण जो जन परे श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया पर्या तो शरण आए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी

जय आप रचयो प्रपंच का हृदय गुण में कीनो विस्तार पापुन तय पै गावत को नर को स्वरूप मंजावत आल जाल माय जंजाल हमे मोह पर पै पार दू सुख मान अपमान आनक प्रकार की व्याख्यान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक के जय अवगत भक्त तह आप जय पसरे पसार संत प्रताप दो पाका पे धनी उनकी शोभा बनी

है। हुक्म अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोए। नानक हुक्म जे बुझे ताह मैं कह न कोए। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दा जना निशान, गावे को गुण वडियाइया चार। गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन के, गावे को जी ले प्रदे।

माई जेहो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई तीर्थ नावा जेत पावा विण पाने के नाय करी जेते सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिला लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई जे जुग चारे आरजा होर दसुनी होए नवा खंडा विच जानी आए नाल चल सब कोए चंगा नाम रखाई कै जस कर जगले जे तिस नदर ना आवई ता वात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत आ गुण दे तेहा कोय न सुजय जे तिस गुण कोय करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धर तवल आकाश

स्व सुने सरा गुणा के गा सुने से पीर पात सा सुने अंधे पावे राह सुने हाथ वे असगा

असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख रन मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख

असंग कुड़े यार कुड़े फेरा है, असंग मले सुमाल पाख खाए, असंग निंदा से कराए पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया ना जावा एक बार।

असंकाश रूपार होए अखरी नाम अखरी सला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखान जिन्ह लिखे चरनाए जे फरमाए तिव तिव पाए।

तीर्थ तप दया दत दान देखो पावे तिलका मान सुनया मनया मन किता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण किते भगत ना होए स्वासाद बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सवेला भगत कवन कवन तित कवन वार कवन सरुति माह कवन जित हो आकार

नको जा करता सिरटी को साजे या पहचाना सोई किव करे आखा किव सलाही क्यों वरनी किव जाना नानके आखन सबको आखा एक दो एक सियाना वड्डा साहे वड्डी नाई किता जाका होवे

आसन लोए लोए पंडार जोग च पाया सो एका वार कर कर वेख्या सृजनहार नानक सच्चे की साची कार

लख लगे डाया किया एक नाम जगदीश एतरा है पत पवड़िया चढ़िया हुए अकीस सुन गलाया कासके केटाया रेस नानक नदरे पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस

चक्कर चहन अर बरन जात अर पात निहंज रूप रंग अरे पे को कह ना सकत कह अचाल मूर्धन भव प्रकाश संतोष के जय कोट इंद्र इंद्राण शाह शाहान गणिज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत तव सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत पुजंग प्रजा छंद नमस्त महाकाले नमस्त कृपाले नमस्त रूपे नमस्त नूपे नमस्त भिखे नमस्त लिखे नमस्त काये नमस्त जाये नमस्त गंजे नमस्त पंजे नमस्त नामे नमस्त मठामे नमस्त कर्म नमस्त धर्म नमस्त नाम नमस्त धाम नमस्त जीते नमस्त पीते नमस्त बाहे नमस्त डाहे नमस्त नीले नमस्त नादे नमस्त शेदे नमस्त गादे नमस्त गंजे नमस्त पंजे नमस्त उधारे नमस्त पारे नमस्त सुके नमस्त अनेके नमस्त भूते नमस्त जुपे नमस्त निकर्मे नमस्त निर्भरमे नमस्त निर्देशे नमस्त निर्भे

निर्विण काम अद्भुत प्रचंड मित गद खंड अलिशा कर्म आदिशर सर्व धर्म सर्व पंडांड बाडिया चा श्री संत प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निन्नामे अकामे भुजंग प्रजा छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र धाने चतर चक्र जाने चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र दानिए चात्री छंद न सदरे न मित्रे न परम न मित्रे न कर्म न काये जन्म अजाये ना चित्रे ना मित्रे परे हैं पवित्रे पृथ्वी से अधि से अधिर से अकिर से भक्ति छंद प्रसाद करते के शिज देसे के बिज भेसे के गज करमे के पंज भरमे के बिज लोके के दत सोके के वधूत बरने के विभूत कर्ण के राजम प्रवाह है के धर्म तुझा है के शोक भरने के सर्वा भरने के जगत कीर्ति है के शत्रन क्षत्रिय है के ब्रह्म स्वरूपे के अनुभव अनुपे के आद अधेव के आप अपेव के चित्रम बहीने के अधीन के रोजी रजा के रही में रहा के

कलियें के सुंदलियें केसर उतरमानिये केसर उतर दानिये केसर उतर गौणे केसर उतर पौणे केसर उतर देसै केसर उतर पेसै केसर उतर राजे केसर उतर साजे केसर उतर दीने केसर उतर लीने केसर उतर जाहो केसर उतर पाहो केसर उतर देसै केसर उतर पेसै केसर उतर काले केसर उतर पाले केसर उतर हंता केसर उतर गंता केसर उतर भेखी केसर उतर भेखी केसर उतर काजय केसर उतर राजय केसर उतर सोखे केसर उतर पोके केसर उतर दराणे केसर उतर प्राणे केसर उतर देसै केसर उतर पेसै केसर उतर मानिये सदैव प्रधानिये केसर उतर जापिये केसर उतर थापिये केसर उतर भाने केसर उतर माने केसर उतर इंद्रे केसर उतर चंद्रे के सर्व कलीमे के परम पहीमे के अकल अलामे के साहिब कुल्लामे के हुसन वजू है तमाम रजू है हम सलामे सलीखत मुदामे गनीमल शिकिश्ते गरीब अल परस्त

अरंगे नामे त्रिभंगे त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिपादे गंजे गादे सुभंग सर्वभागे सर्वानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप शूत के नरकम प्रणास है के पृथ्वी और प्रवास है नुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विपुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है नुक्त सदा है विपुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है

रिपत आपन है, जब जापन है, अकलंकृत है, सर्वकृत है, कर्ता कर है, अर्ता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रजा चंद। नमो सूर सूर्य, नमो

सासे नमो बांके भंगी स्वरूपे नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले नंगी कामे कश्री छंद अजय है लय है बे है अभय है बै है भू है जू है नास है कासे

अपन के बहु पुंज कवेंगे। सास मुं प्रसन्न विरे जग सदर सवे अवलोक चपेंगे। मानवे इंद्र गजेंद्र रात बचाऊ त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान जादक दान अनेक सोम बरसाज भरेंगे।

श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवे वाच बेनती चौपाई अमरी करो आदे रचा पूनो है चित की इच्छा तब चन मारे हमारा अपना जान करो दोबारा। हमरे दुष्टवे तुम गावो आबा दे मोहे बचावो सुखी वसे मोर परवारा सेवक सख सवे करतारा मोर शान कर दे कर ये सब वैरन को आसंगर ये पूर्ण हो हमारी आशा तोर बन की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवरना त्याऊ जो भर जाऊ सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारिये आबा दे मुझे वरिय मन काल का त्रास निवरिय जो सदा हमारे पछा श्रीयत जो करे और अच्छा राख लियो मोहे राखना रे साहेब संत साहे प्यारे दीन बंद के अंता तुम हो पुरी स्कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जीव अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सगल काल का किया तमाशा जमन काल सगल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जो थियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताय मारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन बजायो आद अंत कह अवतारा सोए गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सगल प्रजाज ने आप सुवारी शिवकन को सब कुन सुन दियो शतरन को पल मोहद कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछांत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दिशकर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब कर करा कर तारा प्रजा तर तब दे अपारा जाब आ कर दो कबू तुम मैं मिल दे तर सब जेते बदन से सब तारे आप अपनी बूझ चारे तुम सब ही तेरे निरालम जानत भेद भेद यार आलम।

श्री सिद्ध गाय चंभव जिगा सुरु सुअंभवा वृषा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संगरो दुष्ट उड़व तत्पाता सकल मलेश करोड़ काता जे अस्तुता सन्नी परे तिनके दुष्ट दुख तुम्हें मरे पुरख जीवन पप परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए है ताके काल निकने हैं रक्षा हुए था सकाल दुष्ट रिष्ट ने तत्काल कृपा दृष्ट तन जाए न हरिओ ताके ताव तन कुमारियो रिद्ध सिद्ध कर्म सब हो दुशाह कोई एक बार जिन तुम्हें समारा काल पास देता है उबारा

तीर स्तरा गन सुधारा सोई है पाएंगे जबते तुमरे तबते को आंख तेरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब वो भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री स्पान कृपा तुमरी कर मैं ना क्यों सब तुए बखाने दोहरा सगल द्वार को छड़ के गयो तुहारो द्वार। बाएंगे की लाज यस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया सहज सेती मन बजिया बधाइया। राग रतन प्रवार परियां शब्द गावने आईया शब्द ओतंगावो हरी केरा मन जनी वसाया।

के कर्म कमाया तू श्री राजा तू जग में आया जिन तेरा जिन रचिया सर सो हर मन नाम साया गुरु प्रसादी हर मन मसिया पूर्व लिखिया पाया कहे नान गे श्री प्रवान हो अजन सत गुसन जितलाया ए नेत्रो मेरे हो हर तुम में जो धरी हर बिन अब न देखो कोई हर बिन अब न देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो वे संसार तुम देख दे हर का रूप है रूप नदरी आया गुरु प्रसादी बुझिया जा वेखा कह हर बिन अब न कोई कहे नान के नेत्र अंत से सतगुर मिली है देव दृष्ट हो सरवणो मेरे हो साचे सुनने नू बटाए साचे सुनने नू बटाए श्री लाए सुनो सत बाणी जे सुनी मंतन हरिया हो आरसना रसमाणी साचे लख बटाणी दागी गत कही न जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पित्र हो वो साचे सुनने नू बटाए हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा बन मजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे परड़ किए दुश्मन गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना दसमां द्वार दिखाया

लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझै। कहत कबीर सुनो रे सन सुनो रे प्राणी,

एक की शरणा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सात संगत सतगुरु की अपार बख्शिश रहमन दा सदका अमृत वेले का सुहावना समां प्राप्त होया है। जो भी संगत आए ने सतगुरु रहमत करन आप सारे की हाजरी दर प्रवान करन दरो करो नाम की दात गुरसिखी जीवन बख्शन। सो आओ ऐतवार सवेर का सुहावना समां सतगुरां दे चरणां च बैठ करके गुरु का जस सरवण करिए। सत्कार योग भाई साहब भाई जसपाल सिंह जी पौंटा साहिब वालिआं दा जथा जी नूं श्री आसा जी का कीर्तन सरवण करवाएगा। उस तो उपरंत सत्कार योग भाई गुरमेल सिंह जी कनेडा वाले कथावाचक उन्हां पासों अज आपां अज दा जो महान हुक्म है साहिबां दा उस दी विचार सरवण करनी है। उपरंत अखंड पाठां दे भोग पाए जावणगे ते दिन दा दीवान शुरू होवेगा। सो बेनती है सारे ही माई भाई दे चानन जो भी रेडियो राही सरवण कर रहे हो खास करके बेरिए दीआं संगतां नूं वध चढ़ के आ के उनके चरणां विच हाजरी लवाओ गुरु कीआं खुशियां प्राप्त करो। आओ कीर्तन सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: बड़े बड़े छत्र धारी, छत्र की छाया कई कोस लौ चलत है। बड़े बड़े राजन के दाब तो फेरत देश, बड़े बड़े भूपण के द्रप को दलत है। मान से महीप और दलीप के से छत्र धारी, बड़ो अभिमान पुंज दंड को करत है। दारा से दली सिर द्रजोदन से मान तारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। कलगीधर पातशाह जी कहते बड़े बड़े जोगी जति सिद्ध साधक होए ने, द्रजोदन वर्गे होए ने, दारे उसको वर्गे होए ने, चले गए ने ते गा भी जाते रहे। इस करके गरीब नवाज जी कहते दिन ते पैर, पैर ते घड़िया,
1: घड़िया तो अर्थ आरंभ हो जाता जे,
0: घड़िया तो पैर बन जाते ने ते पैरां तो दिन बन जाते ने। आव घट तां जिहड़ी उम्र है गुरु खालसा जी, वह घटद्यां घटद्यां घट जाती है। संसार वाले झात मारीए, कोई भी ऐसी संसार विच वस्तु नहीं, आखो गज के सतनाम श्री, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिहड़ी ना घटदी होवे। इत्थों तक आकाश घटदा है, धरती घटदी है, सूरज घटदा है, चंद्रमा घटदा है, नेत्रां दी जोत घटदी है, कन्ना दी आवाज घटदी है, सोना चांदी घटदा है, माता पिता दा स्नेह घटदा है, पति पत्नी दा स्नेह भी घटदिया घटदिया सारा ही कुछ घट जांदा ते उमरा भी घट जांदी है। मेरे गरीब निवाज पंचम गुरदेव महाराज जी दे अमृत बचन ने साहब जी कहिंदे कटंत रूपंग, तुसी सियाणे बैठे हो, अज घट दी गल चली है तां बचपन च रूप जिहड़ा हुंदा बंदे दा होर हुंदा, बड़ा कोमल जिहा हुंदा है, बड़ा मुलायम हुंदा है, बिल्कुल मुलायम हुंदा है बिल्कुल। तां थोड़ा जिहा 10 सालां दा होवे ते उह कोमलता घट जांदी है जी, 10 तों 20 सालां च होर कोमलता घट जांदी है, 20 तों 30 च होर घट जांदी है। 10 बालतन 20 रवण तीसा का सुंदर कहावै, ते जदों 40 दा हो जांदा होर घट जांदी है। फिर मैनूं माफ करिओ, जदों रूप होर घट जांदा है ना, फिर बंदा कहिंदा वाहिगुरु मैं घटन नहीं देना, मैं घटन नहीं देना, फिर इन्ने पैसे बर्बाद कर देने ने, फरा फरा के मशीना फेस ते उहदी डंड ला देनी है। गल्लां सच्चियां ने, कहणियां भी औखियां ने ते सुणनियां भी औखियां हुंदियां ने, ते घटदिआं घटदिआं जिन्ना मर्जी जतन कर लवे। तां गरीब नवाज कहिंदे जे उमरा घट रही है ते रूप भी ते घटी जाना है ना, तू जिन्ना मर्जी कर ला, अज होर कल होर, घटंत रूपंग, क्योंकि बाणी दे बोलां नूं कौन झुठलावेगा, मेरे वर्गे बोलां दे बंदे दे तर्क आ जाएगी। घटंत रूपंग, घटंत दीपंग, दीप नाम है अखां दा, अखां दी जोत भी घटदी है, दो दीवे जगदे ने, दो दीवी बलंदे आ, मलक बैठा आए, घट लीता घट लुटिया दीवड़े गया बुझाए, अथवा सत दीप भी जड़े वह भी घटते जाते हैं। कटंत रूपं कटंत दीपं कटंत राव ससियर निखियातर गगनंग, राव ससियर, राव मींज है सूरज, सूरज चढ़िया सी, थोड़ा चढ़द्या चढ़द्या जवानी आ जानी, घटद्या घटद्या शामा नूं बिलकुल ही घट जाना जे, फिर जदों शामा पै गया रात पै गई जी, फिर तारे चढ़ जाने ने, बड़े जगमग टमकाने ने, जगमग जगमग हो ही होनी है जी, लाइटां जग रही ने, पर सवेर होंदिया होंदिया होंदिया सारे घटद्या घटद्या घट ही जाने ने, चंद्रमा घटदा जांदा है। कटंत रूपं कटंत दीपं कटंत राव ससियर नखियत्र गगनंग, कटंत वसुदा गिर तर से खंडंग, वसुदा नाम धरती है, खंड है, सब कुछ घट जाण वाला है। कटंत वसुदा गिर, गिर ना पहाड़ भी घटदे ने, वसुदा गिर तर खंडंग, कटंत ललना सोत प्रात ही तंग, ललना नाम है घरवाली, घरवाले दा एक दिन जांदिया जांदिया प्यार भी घट जांदा है, घर की नार उर है तन लागी, ओ तो भूत भूत कर भागी, घट गया ना घटद्या घटद्या घट जांदा है। कणक सोना बंदा खरीदा कहिंदा जी 3 तोले है, ते उहनूं साल बाद तोल के वेख लिओ घटदा घटदा प्या प्या ही घट जांदा, कहिंदे सब कुछ घट जाण वाला है। कटंत ललना सुत, सुत नाम है पुत्र दा, सारे आपां धीआं पुत्तरां वाले आ, जदों पुत्तर बचपन हुंदा है मां बाप नाल कुछ प्यार वखरा जिहा हुंदा है, बहुत ज्यादा प्यार हुंदा है, जीता नहीं है, जवानी विच थोड़ा घट जांदा है, फिर माफ करिओ जदों रब कृपा करदा है ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਮਾਰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਘਟੇ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਤ ਹੈ ਅਨੇਕ ਸੁੱਤ, ਅਨਕ ਸੁੱਤਨ ਪੈਣਾ ਤੈਸੋ ਹੋਏ ਆਵਈ। ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤ ਚਾਹਤ ਉਹ ਸੁੱਤਨ ਕੋ, ਤੈਸੇ ਨਾ ਸੁੱਤਨ ਚਿਤ ਚਿਤ ਚਾਹ ਉਪਜਾਵਈ। ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਆਨੰਦ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁੱਤ ਤੈਸੇ ਨਿਪ ਜਾਵਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਧਿਆਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿਤਾ ਮਾਂ ਵੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਘਟਦਿਆਂ ਘਟਦਿਆਂ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਟੰਤ ਵਸਦਾ ਗਿਰ ਤਰਸੇ ਖੰਡਨ, ਘਟੰਤ ਲਲਨਾ ਸੁੱਤ ਭਰਾਤ ਹੀਤੰਗ, ਘਟੰਤ ਕਣਕ ਮਾਇਆ ਸਵੈ ਰੂਪੰਗ ਨਹਿ ਘਟੰਤ ਕੇਵਲ ਗੋਪਾਲ ਅਚੁੱਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਟਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਘਟੰਤ ਕੇਵਲ ਗੋਪਾਲ ਅਚੁੱਤ। ਕੇਵਲ ਕੇਵਲ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਘਟਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਘਟਣੀ। ਨਾਮ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਬਚਨ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਰੀਬ ਬਨਵਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਆਦ ਬਿਹਾਤ ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਨੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵ ਹੀ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ, ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਲਾ ਕੇ ਨੈ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ। ਆਜੂ ਸਮਝ ਕਸ ਬਿਗਰਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜਨ ਤੈ ਨਿਰ ਭੈ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਅਜੂ ਸਮਝ ਭਈ ਅਜੇ ਸਮਝ ਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਈ ਡੁੱਲਿਆਂ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਧੋ ਧਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਸ ਬਚਣ ਤੇ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜੇ ਤ੍ਰੇੜ ਆਈ ਦੇ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਮਦਿਆ ਸਿਮਦਿਆ ਸਿਮਦਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਘੜਾ ਜੇ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਜੇ, ਜਿਸ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਲੀ ਥੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬਹੁਤੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ

आनंद जिस्मानी मौत आ बाहरली मौत मर जाना है सबने मर जाना है लखा जतन कर रोजाना दी मौत ना मर रोजाना दी आत्मक जीवन नू प्राप्त कर ता गरीबन वाजी सचे पातशाह कृपा कर देने सो देने आवन लगा भाई वो जिहड़ा दिन रब ने मिथिया है ना आ रहा क्योंकि सवास पाए ने तो जिन्ने सवास ने ना घटने ने ते ना वधने ने साहबां दे बोलने जी गन काले सब दिवस सास नह बटन घटन तिल तिल मात्र सार तिल मात्र ना वधने ते ना घटने ने वह पता नहीं है सानू कि वह दिन केड़ा कथा विचार चल रही है पता नहीं सवास दे आना जा नहीं आना सास सास हर नाम जप बिरथा सास ना खोए क्या जानो क्या अंत कहो यही सवास मत हो ये तो किसी नहीं पता भी अंतला सवास केड़ा है।

अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे आए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।

पात्र द्वितीया माल को सकिया लाप है संग रागनी पांचो थाप है गौंड करी अर देव गंधारी गंधारी से होती उचारी तनाश्री पांचो गाई माल राग को संग संग लाई।

ना जानी है समुंद सह सुल्तान ग्रह से ते माल तन केड़े तल ना होनी जेतस मन हो ना विसर है अंत न सिवते क

ताकि अगला कथिया न जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा

सनमुख हुए जे को गुर ते वेमुख होवै बिन सत गुर मुक्त न पावै पावे मुक्त ना होरत है कोई पुछो विवेकिया जाए अनेक जूनी भरमे आवे बिन सतगुर मुक्त ना पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना पाए आवो सिख सतगुरु के

आख वखाणी हर हर नित करे रसना कहा कछु न जानी चित जिनका हिर लया माया बोलन भैर वाणी कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा हो आसमाओ शब्द सेती मन मिलया सचे लाया भाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनू दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन हीरा जित जड़ाओ शिव सकते आप्यो पाए।

पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याइये मेरे जियड़े ता सर्व सुख पाम है मेरे मना।

0: इतनी सेवा प्रदान करनी जी, कीर्तन कर दिया प्रभु जी, माफी बख्शनी। बुलाओ फते वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: कीर्तन का आनंद माण रही गुरु प्यारी साध संगत जी, बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवादी हाँ सत्कारयोग ज्ञानी गुरप्रीत सिंह जी, मुख सेवादार गुरद्वारा साहब फरीमाउंड, भाई जोरावर सिंह जी, भाई सुखदेव सिंह जी, जिन्होंने आप संगतों नूं कीर्तन दे नाल निहाल किया है, इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो पहला भी अनाउंसमेंट की सी, मैं जो खंड पाठ एक जिहड़ा सत्कारयोग वीर रवि गिल परगिल परिवार वालों करवाया गया, अज वो सचखंड वासी संत बाबा अजीत सिंह हौसवाली वाले, उन्हों का जन्मदिन, तो दूसरा सत्कारयोग धन धन श्री नाभ कमल राजा साहेब, उन्हों की बरसी के संबंध में ये उन्होंने गुरु जी के चरण परसे, तो उन्हों की याद में ही ये अज दीवान ने। दूसरा खंड पाठ जिहड़ा सी वह जो जिंदा शहीद भाई बलवंत सिंह जी राजोआणा, उन्हां दी चढ़दी कला, बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते अरदास बेनती की गई, ये उसी संबंध में अज प्रोग्राम चलने ने। ते तीसरा जो मैं अनाउंसमेंट की थी कि सत्कारयोग भाई रणजीत सिंह जी दमदमी टकसाल दे जो बड़े ही चंगे प्रचारक सन, जिन्होंने काफ़ी सेवावां कीतियां, दो क साल पहला आप संगतां दी भी इत्थे हाजरी भर के गए, तो जदों भी अमृत संचार करते सी उस विच पंजा प्यारियां दी भी सेवा उन्होंने बहुत निभाई। वो सचखंड वासी संत बाबा करतार सिंह जी 13वें मुखी दमदमी टकसाल दे उन्हां दे विद्यार्थी सन, ते आपां अखीर विच उन्हां दी आत्म रूह दी शांति वास्ते भी अरदास करनी आ। ते आओ हुण मैं ज़्यादा समा ना लवा, जो निशान साहब की सेवा है 30 तरीक आउंदे एतवार नूं निशान साहब का चोला बदलिया जाएगा। निशान साहब की सेवा दे विच आप संगतां ने जरूर हाजरियां भरनियां। ते आओ हुण पंथ दे महान विद्वान सत्कारयोग ज्ञानी गुरमेल सिंह जी कनेडा वाले, जिन्हां ते बड़ी महाराज की बख्शिश है, मैं पहला भी जदों आए है उदों भी दस्या ही कि बड़ी नताड़क सेवावां कर रहे हैं, जिहड़े कि बहुत प्रचारक अजकल स्टेजां ते नहीं बोल रहे, क्योंकि वह जां हिंदुस्तान की सरकार तो डरदे आ, क्योंकि वह भी बहुत दुखी करदे आ। सो ये बड़े नताड़क प्रचारक ने, आओ मैं उन्हां नूं बेनती करदा आप संगतां नूं कथा द्वारा निहाल करन, गुरबाणी कथा सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: गुरु प्यारी साध संगत सतगुर सच्चे पातशाह ने रहमत कीती है, तरस कीता है, आप दे दर ते सेवा लई है, मेहर भरिया सीस ते हथ रख के एक भी एक होर आप जी दे चरणा विच सेवा निभाउणी है। सारी संगत आसीस बख्शियो। दास कलगीधर पातशाह दे महान पवित्र स्थान श्री पौंटा साहब तो आप दी संगतां दी चरण तोड़ लैण वास्ते हाजिर होए हाँ। सो सारी संगत दी आसीस दे सदके ही सेवा कर सकते हाँ। सतगुर सच्चे पातशाह जी का बेअंत बेअंत शुक्र गुजार हाँ, बेअंत धनवाद करदा हाँ तह दिलों। प्रबंधक कमेटी का, सारे मैंबरां दा जिहड़े सेवा दे के नवाजदे हन, सत्कारयोग साडे वड्डे वीर परिवारक मैंबर हंसरा साहब, दोनों भरा जंडी साहब, सरदार दविंदर सिंह जी, सरदार अमृतपाल सिंह जी, बहुतियां दे नाम मैं जानदा भी नहीं, सारियां दा तह दिलो शुक्र गुजार हाँ। ते अपने चित चों रोम रोम करके अरदास करदा कि महाराज इन्हां सारियां नूं चढ़दी कला बख्शे। जिहड़ा बहुत सुचज्जा प्रबंध इत्थों दा चल रहा है, एक बेनती छोटी जी आप जी दे सामने जरूर करनी है कि यह स्थान एक महान स्थान है सारे अमरीका विच। अज तिना हफ्तियां दी एक रिपोर्ट तुहानू देन लगा मैं। तिना हफ्तियां विच संगत विचों कई बंदे ऐसे मिले जिन्हां दे घर विच बड़ियां प्रॉब्लम सन, बड़े मुसीबतां सन, कई दुखड़े सन, ते ओ ए आखन लगे कि ए फ्री माउंट गुरुद्वारे दे स्थान तो साडे सारे दुख दूर हो गए। आखो श्री वाहे। क्यों? इत्थे नाम बाणी दा पहरा चलदा है, मर्यादा चंगी है। ये सारा सेहरा प्रबंधक कमेटी नूं ते गुरु के वजीरां नूं जो इत्थे सेवा निभाउंदे हन उन्हां नूं जांदा है। सो मैं यही बेनती करांगा कि सतगुर सच्चे पातशाह इन्हां सारयां नूं चढ़दी कला बख्शन ते गुरु की संगतां जुड़दियां रहन। गुरुद्वारा एक टकसाल है जिथे आ के हर जीव की मुराद पूरी हुंदी है, हर जीव का मन की खुराक मिलती है, शरीर की खुराक भोजन भी मिलता है ते मन की खुराक रूहानियत का घर जिथों गुरु के शब्द का लंगर भी मिलता है। सो सतगुर बख्शिश करन साडे सारयां ते सीस ते मेहर भरे हथ रखन। इन्नी सेवा प्रवान करते हुए भुला चुका दी खिमा करना, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई जसपाल सिंह जी, हजूरी कीर्तनी गुरदास साहब पौंटा साहब, जिन्होंने पिछले तीन हफ्तों तो तकरीबन इस स्थान पर हाजरी भरे हैं। आने वाला एक हफ्ता होर इस स्थान पर इस तरह ही कीर्तन की हाजरी भरनगे। सो उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण आप जी के सन्मुख कुछ समय वास्ते सत्कारयोग भाई साहब भाई अरजिंदर सिंह जी और उन्हों का जत्था कीर्तन की हाजरी भरेगा। दोबारा फिर आप जी के चरणों में बेनती करनी चाहांगा कि आने वाली 30 अगस्त को, आने वाले हफ्ते, आने वाले एतवार को साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का संपूर्णता दिहाड़ा आ रहा है। वह दिहाड़ा जो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दमदमा साहब की धरती उत्ते सतगुरां साहब की संपूर्णता की, सो बहुत ही प्यार सत्कार श्रद्धा सहित मनाया जाएगा। इस दे नाल ही 1 सितंबर नूं गुरु साहब का पहला प्रकाश दिहाड़ा आ रहा है, जो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने दरबार साहब प्रकाश किया। सो इन्हां इतिहासक दिहाड़े नूं मनाउंदिया होया नाल ही उस हफ्ते दे विच मौजूदा सिख संघर्ष के कौमी योद्धियां दी शहीदी दिहाड़े भी आ रहे हैं, सारे ही मनाए जा रहे हैं। आप संगतों के चरण च बेनती करें कि हाजरी भरन का जतन करो। आओ हुण भाई साहब भाई रजिंदर सिंह होना पासों कीर्तन सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सिमरों सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माहि मिटा। सिमरना किसनों है? सिमर व्यास दिशंबर एक, वो इको ही जो सारी सृष्टि का मालक वाहेगुरु। सतगुर गुरबाणी दसते, सतगुर गुर पूरा अरादो, उन्होंने सतगुरु भी किया, पूरा गुरु भी किया। जो ती इतना मन में जोड़ के जपदे, उन्होंने आराधना लिखा कि सतगुर गुर पूरा अरादो, हो सब किल विख पाप गवाया। किल विख कहता पाप कह दिता, जेडे विचार जिन्हों कल कलेष किया सुखमनी साहब, ये सारे डिलीट हो जाएंगे मन चो, तो वाहेगुरु वस जाएगा। तो जिन्हों के वाहेगुरु वस गया वह सुखी क्यों ना होंगे मन च? हिरदे नाम वसाए हो, घर बैठे गुरु त्याए हो। ये सतगुरु बख्शिश करते ने। हुण तुसी चेक कर लिया होना सारे ने, भावें 10 मिनट ही सिमरन किया, अद्धी घड़ी भी नहीं किया। अजे कबीर साहब ने कहा ना, एक घड़ी आधी घड़ी आधी होते आध, 6 मिनट 6 मिनट तो तुसी ज्यादा किया, तो हुणे ही सुख महसूस हो रहा। सहज आनंद होवा वडभागी, मन हर हर मीठा लाया। जिहड़ा बोलण नूं दिल नहीं करदा, हुण मीठा लगन लग पिया। हर हर वाहिगुरू वाहिगुरू। ये तुसी चल पे इस मार्ग दे, इत्थों शुरुआत हुंदी है बंदगी दी। सुख आउंदा